तुमरा लखा ना जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कही पुप्पा

के जगतं कृतिहा के शत्रं क्षत्रिया के ब्रह्मं स्वरूपा के अनुभव अनुपा के आदा देवा के आपा देवा के चित्रं।

जगत मनायो देव दचन मजायो आदि अंति काय अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसहि को हमारी सकला प्रजा जनिया सवारी सेवकन को सब गुण सुख दिया सतरन को परम वर की या कड़ कड़ की अंतर की जानत भले बुरे की वीर विशांत चीटी ते कुंजरिया थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुखाए ते दुखी सुख पाए साधन गे सुखी एक की वीर विशाना कड़ कड़।

साम कह सितंबर स्वामी सचमाच साच रह सबको सच समावै रिकर परपूर राम नाम देवा मसूर ना लिय प्रच जाय नानक तुम खंतर पाए जुजमह जोर चले चंद्रावल

0: जय मात पिता सुत मीत न पाई
1: मनोहा नाम तेरे संग सहाय
0: जय महाप्या दूत जम दलै
1: तै केवल नाम संग तेरे चले
0: जय मुश्किल होवे अत भारी
1: हर को नाम किन महे उधारी
0: अनक पुन चरण करत नहीं तरै
1: हर को नाम कोट पाप पर हरे
0: गुरमुख नाम जपो मन मेरे
1: नानक पावो सुख कनेरे
0: सगल सिष्ट को राजा दुखिया
1: हर का नाम जपत होए सुखिया
0: लाख करोरी बंधन पर
1: हर का नाम जपत निस्तरे
0: अनक माया रंग तिखना बुझावे
1: हर का नाम जपत आवे
0: जय मार्ग ए जात अकेला
1: तै हर नाम संग होत सहेला
0: ऐसा नामन सदा त्याय
1: नानक गुरमुख परम गत पाइये
0: छूटत नहीं कोट लखवाही
1: नाम जपत है पार पराही
0: अनक बिगंजय

0: प्रभु दर्श पे आसा
1: नानक ताके बल बल जासा
0: सगल पुरख में पुरख प्रदान
1: सत्संग जाका मिटे अभिमान
0: आपस को जो जाने नीचा
1: सो गन में सबते ऊंचा
0: जाका मन हुए सगल की रीना
1: हर हर नाम तन कट कट चीना
0: मन अपने ते बुरा मिटाना
1: देखे सगल श्रेष्ठ साजना
0: सुख दुख जन समृष्टि

0: स्वामी
1: अपनी गत मित जन हो आपे
0: आपन संग आप प्रवराते
1: उमरी उस्त तुम ते होए
0: नानक अवर न जान सकोए
1: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
0: हर को नाम जप निर्मल कर्म
1: सर्व क्रिया में उत्तम

0: मिथ्या रंग संग माया पीक हस्ता
1: मिथ्या त्रो मोह अभिमान
0: मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान
1: अस्तर भक्त साधकी शरण
0: नानक जप जप जीवे हर के चरण
1: मिथ्या सरवन पर निंदा सुने
0: मिथ्या हस पर दर्प को हिरे
1: मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय पाद
0: मिथ्या रस

0: साधके संग मुखे उज्जल होत
1: साध संग मन सगली खोत
0: साधके संग मिटे अभिमान
1: साधके संग परटे सो ज्ञान
0: साधके संग बूझे प्रभ नीरा
1: साध संग सब होत नवेरा
0: साधके संग पाए नाम रतन
1: साधके संग एक ऊपर जतन
0: साधकी महिमा वरने कौन प्राण
1: नान साधकी शोभा ब्रह्मय समानी
0: साधके संग गोचर मिले
1: साधके संग सदा पर फुले
0: साधके संग आवे बस पंचा
1: साध संग अमृत रस पुंचा
0: साध संग होए सब की रेन
1: साधके संग मनोहर वैन
0: साधके संग नकत हूं तावे
1: साध संग असत मन पावे
0: साधके संग माया ते पिन
1: साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
0: साध संग दुश्मन सब मीत
1: साधु के संग महापनीत
0: साध संग किस स्यों नहीं बैर
1: साध के संग न बीगा पैर
0: साध के संग नाही को मंदा
1: साध संग जाने परमानंदा
0: साध के संग नाही हो ताप
1: साध के संग तजे सवे आप
0: ते जाने साध बढ़ाई
1: नानक साध प्रभु बने आई
0: साध के संग न कबहू तावे
1: साध के संग सदा सुख पावे
0: साध संग वस्त गोचर लहे
1: साधु के संग अजर सहे
0: साध के संग बसे थानी ऊंचे
1: साधु के संग मह पहुंचे
0: साध के संग दृढ़ है सब धर्म
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म
0: साध के संग पाए नाम निधान
1: नानक साधु कह करवान
0: साध के संग सब कुल उधार
1: साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार
0: साधु के संग सोतन पावे
1: जिस संग ते सब को बरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा
1: साध के संग शोभा सुर देवा
0: साधु कै संग पाप पलायन
1: साध संग अमृत गुण गायन
0: साध के संग सर्वद थान गम
1: नानक साध के संग सफल जन्म
0: साध के संग नहीं किछ काल
1: दर्शन भेट तो होत निहाल
0: साध के संग कलूखत हरे
1: साध के संग नरक पर हरे
0: साध के संग इहां उहां सुहेला
1: साध संग बिचरत हर मेला
0: जो इच्छे सोई फल पावे
1: साध के संग न बिरता जावे
0: पार ब्रह्म साध रिद बसे
1: नानक उतरे साध संग रस
0: साध के संग सुनो हर नाऊ
1: साध संग हर के गुण गाओ
0: साध के संग न मन ते बिसरे
1: साध संग सर पर निस्तर
0: साध के संग लगे प्रभु मीठा
1: साधु के संग घट घट डीठा
0: साध संग पै आज्ञाकारी
1: साध संगत पई हमारी
0: साध के संग मिटे सब रोग
1: नानक साध मिटे संयोग
0: साध की महिमा वेद न जाने
1: जेता सुने ते तब ख्याने
0: साध की उपमा ते हो गुण

चिंतामन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नाम ने दो कर तल ताके हर हर हर न जपे रसना।

जो रह रहाओ। जौ तुम दीवरा तो हम बाती, जौ तुम तीर्थ तो हम जाति, साची प्रीत हम तुम सुं जोरी, तुम सुं जोर अवर संग तोरी। जह जह जाओ तहां ते सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। तुमरे भजन कट जम फंसा, भगत हेत गावे रवदासा। जल की पीत पवन का थंबा,

पावन चवरो करे सगल बनराय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पाप खंडाओ तेरी आरती अनहत शब्द वाजंत पेरी रहाओ सहस तब नैन नन नैन है तोहे कौ सहस मूर्त नन्ना एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध

संत मारी धनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बोध पतीस कोट मुन जन सब चाहे हर जीव तेरो नाव गुर प्रसाद को बिरला पावे जिन को ललाट लिखिया तुर पाव जप मन रामे नाम हर जसूत मुकाम जो गावे सुने तर जस स्वामी ओ तनकै सत बलिहारे जाव रहाओ शरणागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देव सोई हो पाओ दीन दयाल कृपा कर दीजे नानक हर सिमरन कहै चाओ श्री महला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवै सब गावै हर हर उत्तम बानी गावै सुनिया तिनका हर थाए पावै जिन सतगुरु की आग्या सत सत करमानी बोलो भाई हर कीरत हर भवजल तीर्थ हर दर्तन की उत्तम बात है संतो हर कथा जन जनो जानी रहाओ आपे गोरा चेला है आपे आपे हर प्रचोज बदानी जन नानक आप मिलाए

0: प्रीत प्रेम उपजे प्रीत प्रेम रस चाओ।
1: त्रासरी महला चौथा ईसा पूर्व सर्व सुख दाता हारो जाके वास है काम ते नाल सुवै सहर त्याई।

निर्मल सेव एक निरंजन जाकी रास मिल साध संगत होवत प्रगास जीवन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट कलेश मिट हर नाय जन्म मरण सगला दुख नासाय गुरमुख जाकाय मन तन बासाय जिसम आप लय लाड़ लाए दरगे मिलाय तसे ही जाए सही भगत जे साचे पाणे जिम काल ते पै निकाणे साचा साहेब सच दरबार कीमत कौन कहे विचार काट काट अंतर सगले आधार नानक जाचे संत रे नार तना श्री महला पंजवाय के ओंका सतगुरु प्रसाद कर बहारू तेरा परवासा तू जानक है संग कर कृपा

स्वामी की शोभा आनंद सदायो उलास रहाउ चरण सरन पूर्ण परमेश्वर अंतर्यामी साखेओ जान बूझ अपना कियो नानक भगतन का अंकुर राखियो उतना श्री महला पंजवा जह जय पेखो तय हजूर दूर कत हो न जाई रावरिया सर्वत्र मैमन सदा त्याई ईत ऊत नहीं बिछड़ै सो संगी गणियाय बिन सजाए जो निमुख मै सो अल्प सुख भनियाय रहाउ प्रत पाले अपयाओ दे हस ऊण न होई सास सास संभालता मेरा प्रसोई अशल अशेद अपार प्रभ ऊचा जाकर रूप जप जप करे आनंद जन

मने सदारी स्वागत की अवरदा जाए बिरथारी। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत काम नहीं गवारी रहा। कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी के बुढ़ते आंद नानक प्रभु काढ़ तो साजना संगारी इतना श्री महला पनिवार।

मंडल महयाए जन्म पदार्थ दुबदा खोवै आप न चीन स ब्रह्म ब्रह्म रोवै कहतो पढ़तो सुनतो एक तीर्थ धर्म तरनी तर टेक जत सत संयम हृदय सुमाए चौथे पद को जे मन पति आए सचे निर्मल मैल न लागे गुर कै शब्द परम पाओ भागे सूरत मूर्त आदि अनूप नानक जाचै सच स्वरूप तनासरी महला पहला सहज मिले मिलया परवान ना ते सुमरन नयावन जान ठाकुर मैं दास दास मैं सोए जय देखा तय अवरन कोय गुरमुख भगत सहज कर पाइये बिन गुर भेटे मर आइये जाइये रहाओ सो गुर करो जे साच दृढ़ आवे अकथ कथावे शब्द मिलावे हर के लोग अवरनी कारा सचो ठाकुर सच प्यारा तन मै मनवा मन मै साचा सो साचा मन साचे राचा सेवक प्राप के लागे पाए सतगुर पूरा मिले मिलाए आप दिखावे आपे देखै हठ नाम पति जय नाम बो भेखै घड़ भांडे जिन अमृत पायाओ प्रेम भगत प्रभ मन पति आयाओ पड़ पड़ फूलै चोटा खाहे बहुत स्याण पयावे जाए नाम जपे पो भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिलाओ तीर्थ बनवासा परम डोलत पय उदासा मन मैल सूचा क्यों होए साच मिल पावे पत सोए आचारा विचार शरीर आदि जुगाद सहज मन धीर पल पंकज मैं कोट उधारे कर कृपा गुरु मेल प्यारे किस आगे प्रभु तुद

साध तीर्थ नावन जाओ। तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पुरब सदा दशहरा हो नाम हर का सदा जाचो देहु प्रभ तरनी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना

भगत कछु जाने ताको अचरज काहो ज्यों जल जल में पैस न निकसे त्यों तुर मिलियो जुला हर के लोगा मैं तो मत का भोरा जाओ तन काशी तजे कबीरा रमैये कहा निहोर हाओ कहत कबीर सुनो रे लोई परम न भूलो कोई क्या काशी क्या ऊखर मग हर राम हृदय जो होई इंद्र लोक शिव लोक जैबो उस तप कर बोर ऐबो क्या मांगो केस थिर नाही राम नाम रख मन माहिर हाओ शोभा राज बिबे बड़ियाई अंत ना कहू संग सहाई पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया इन ते कहो कवणे सुख पाया कहत कबीर अवर नहीं कामा हमरे मन धन राम को नामा राम सिमर राम सिमर पाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई रहाओ बनता सोत देह गृह संपत सुखदाई इन मैं कश नाहे तेरो काल अवध आई अजामल गज गणका पतत कर्म कीने ते उत्तर पार परे राम नाम लीने सूकर कूकर जोन भ्रमे तौ लाज न आई राम नाम शाड अमृत काहे बिख खाई तज भरम करम बेदन खेद राम नाम लेही गुरप्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही तनासी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकारो संग प्रसाद गहरी करके नीब खुदाई ऊपर मंडप छाए मार कंडे ते को अधिकाई जैन त्रिन तर तू मूंड बलाए हमरो करता राम स्नेही

जयत श्री महला पंजवा करती जाय क्यों का सतगुरु प्रसाद कोई जाने कावन इहां जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूजाय ताकि निर्मल रीत रहाउ मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंते को ना सहाय मुक्त माल कनक लाल हीरा मन रंजन की माया हाहा करत बिहानी अवदय तामय संतोख न पाया हस्त रात असाव पावन तेज तनी पुमन चत रंगा संग न चालो इन मैं कसुए ऊट सदायो नंगा हर के संत प्रया प्रीतम प्रभ के ताके हर हर गाइये नानकिया सुख आगे मुख उज्जल संग संतन कै पाइया जैत श्री महला पंजवा करतीजा दोप दे क्यों का सतगुरु प्रसाद देहो संदेसरो कहियो प्रया कहियो बिसम पै मैं बहु बिद सुनते कहो सुहागण सहियो रहाओ को कहतो सब बहारो बहार को कहतो सब महियो बन दिसै चिन्ह लखिए सुहागण सात बुझहियो सर्ब निवासी घाट कटवासी लेपनी अलपहियो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बस हियो जय श्री महला पंजवा धीरो सुन धीरो प्रभ को रहाओ जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेख प्रभ को नीरो बेसुमार बेअंत बड़दाता मने गहीरो पेख प्रभ को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूराओ जप प्रभ को गुरप्रसाद नानक मन वस्या दुख न कब हूँ झूरो बुझ प्रभ को जय श्री महला पंजवा लोड़ इंद्रा साजन मेरा कर कर मंगल गाओ नीके घट घट तिसे बसे।

साध संगत के अंचल लावो, भिखमंद दी जाए तरनी, सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मैं तरनी, हर दर्शन तृपत नानक दास पावत, हर नाम रंग आपरनी, जय श्री महला पंजवा, हर जन सिमरो हिरदे राम, हर जन को अपदा निकट न आवै, पूर्ण दास के काम रहाउ, कोट बिगण बिन से हर सेवा, निचल गोविंद धाम, भगवंत भगत को पहो किस नाही, आदर देत जाम, तज गोपाल आन जो करनी, सोई सोई बिनसत खाम, चरण कम हृदय गो नानक सुख सुन विश्राम, जय श्री महला नौवा एक ओंकार, सतगुरु प्रसाद भूलो मन माया उरजायो, जो जो कर्म कियो लालच लागो, ते ते आप बंधायो रहाओ, समझ न परि बेखे रस रसयो, हर जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जान्यो नाहे न बंद, खोजन को तायो, रतन राम काटी के पीतर, तक ज्ञान पायो, जन नानक भगवंत भजन बिन बिरता जन्म गवायो, जय श्री महला नौवा, हर जू राख लिहो पत मेरी, जम को त्रास पयो अरंतर, शरण गहे कृपा निद तेरी रहाओ, महा पतत मुगद लोभी फोन, करत पाप अबहारा, पै मरबै को बिसरत नाहे न, ते चिंता तन जारा की, ओ पाव मुगत के कारण, दह दिस कोय उठ तहाया, काट ही पीतर बसे निरंजन, ताको मर्म न पाया, नाहे न गुण नाहे।